पंज चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनौ करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर सरणाई

तिन कवन खलावे कवन जगावे, मन मह सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सिधान

जशन बजायो आद्यंत कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी।

काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तैं सुख हुआ तित कर अनहद वाजी आनंद सुनो बड़े।

काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडर खंडाहे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लेव मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पुन वडाहे कर डंडाओत पुन वडाहे राउ साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हो मैं कंडाही ज्यो ज्यो चल है चुभ दुख पावहे जमकाल सह है सिर डंडाहे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन मरण पव खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड बै मंडाहे हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वडाहे जन नानक नाम उदार टेक है हर नामे सुख मंडाहे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा।

तरयो ब्रह्म ज्ञानी जसै जगाए पिया वह रस कथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहा जहो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर मैल।

बाबूया पहलवान, कुत्ता होया पहलवान जग दे अखाड़ा, कुत्ता होया पहलवान जग दे अखाड़ा।

0: सुगमा आए रसिया दिन सब जाया रला कुरबान की ताबू विचो जाए नानी अनित तू संतो सतो प्यारे अजना मेरा आदाए लागे
1: कल सुख कल सुख कल सुख कल सुख कल

कीर्तन श्रवण करा रहे हैं भाई साहब भाई गुरचरण सिंह जी रसिया जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल कीर्तन काउंसिल शब्द श्रवण करा रहे हैं मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसीं इह प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तों सुन रहे हो। यह प्रोग्राम गुरद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तों प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसीं सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह वी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते टैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
3: Saluk mahalla tija Satgur te khali ko nahi Mera prab mel malai Satgur ka darshan safal hai Jeha ko ichhe teha phal pai Gur ka shabd amrit hai सब तृष्णा भुख गवाई हर रस पी संतोख होआ सच वसिया मन आई सच त्याए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाई सचो दह दिस पसरिया गुर कै सहज सुभाई नानक जिने अंदर सच है ते जन छपह ना किसै देश पाई महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जां कहो नजर करे मानस ते देवते भए सच्ची भगत जिस दे हौ मैं मार मलायन गुर कै शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नावै की वड्डी वडियाई हर करता आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उना अंदर हिरदय पाई निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन उना पराया भला ना सुखाई क्या हुआ किसे ही की चख मारी जा सच्चे सिंह बन आई जे गल करते भावै सा नित नित चढ़ै सोआई सब चख चख मरै लुकाई सलोक महला तीजा त्रिग एह आसा दूजे भाव की जो मोहे माया चित लाई हर सुख पल्लर त्यागिया नाम विसार दुख पाई मनमुख ज्ञानी अंदले जन्म मरह फिर आवै जाई कारज सिद्ध ना होनी अंत गया पछताई जिस कर्म हो है तिस सतगुर मिले

कडिए हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा अंदर कपट सदा दुख है मनमुख ध्यान ना लागे दुख विच कार कमावनी दुख वरतै दुख आगे करमी सतगुर भेटी है ता सच नाम लिव लागे नानक सहजे सुख होए अंदरों भ्रम भौ भागे। महला तीजा गुरमुख सदा हर रंग है हर का नाउ मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा मनमुख मैले मरह गवार गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार भणत नानक सुनो जन भाई सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे सिर धंधा नित मार दूजै पाए सूते कबू ना जागह।

ना ये हाथ बकाए गुर कै शब्द पर जाली है ता एह विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाई पौड़ी सतगुर की बड़े।

सबना का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियो सब जहान जे सतगुर नो मिल मन्ने सो हस्त पंत सिजे जे विमुख होवे सो फिरे पृष्ठ थान जन नानक कै बल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए पए।

क्यों मन रहे हजूर मन मुख जन्म गवाया झूठै लाल चकूर नानक बख्श मलायन सच्चा शब्द हदूर महला तीजा हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपया मन आनंद वड भागी हर पाया पूर्ण परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुना सतगुर बख्श ले सत संगत नाल रलावे यो मीह उठे गलियां नालियां टोबियां का जल जाए पवे विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन होए जावे एह वड्याई सतगुर नरवैर विच जित मिले तिसना भूखे उतरे हर शांत तर आवे नानक तिहो अचर

कीर्तन मने ताकी कशुना कानी रे राजा प्रजा सम कर मारे ऐसो काल बडानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र कलत्र लक्ष्मी।

आई, अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई, जरा जीवन जो बन गया, किस किया ना नीका, एहो जियरा निर्मूल को, कौडी लग मीका, कहो कबीर मेरे माधवा, तू सर्व व्यापी, तुम समसर नाही दयाल, मोहे समसर पापी, बलावल, नित उठ कोरी गागरियान, लीपत जियो गयो, ताना बाना कछु ना सूजै, हर हर रस लपटेओ, हमारे कुल कौने राम कहेओ।

उपजय जन को जन कहा करह बेचारी रहाउ त्रिग तन त्रिग एह माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फन्नी इस माया को दृढ़ कर राखो बांदे आप बचन्नी क्या खेती क्या लेवा दे परपंच झूठ गमाना कह कबीर ते अंत बिगूते आया काल निदाना बलावल शरीर सरोवर पीतरे आछै कमल अनूप परम ज्योत प्रखोतमो जा कै रेख न रूप रे मन हर पज भ्रम तजहो जग जीवन राम रहाउ आवत कछु न दिसै नह दिसै जात जह उपजै बिनसै तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज बीचार कह कबीर सेवा करहो मन मंज मरार बलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ काशी ते धुन उपजै धुन काशी जाई काशी फूटी पंडता धुन कहां समाई त्रिकुटी संद मैं पेखिया घट हूं घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे ते

चरण कमल जा कह हृदय बस है सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निदता कै सहज सहज जस बोले देव रहाउ तब एह मत

जग जीवन स्यो जियो समाना बलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद दारद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किस नहीं भव खंडन राम।

जैसलो होए बर्न अबर्न रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानी है जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कटंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह जल समीप पन रवदास जन्मे जागे ओए बाणी सदने की राग बलावल एक ओंकार सतगुर प्रसाद नृप कन्या के कारण एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासै सिंह सरन कत जाइए जो जम्बुक ग्रासै रहाउ एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे प्राण गए सागर मिले।

तीर्थ बनाए पानी नाल पत्थर नहीं जोड़िया पानी नाल बाणी जोड़ दती अजखे खोश यही फर्क है पुरातन से गुरुमत के तीर्थां दा जिथे तुसी गुरुमत के तीर्थ जाओगे उथे जल भी सरोवर भी होगा पर कथा कीर्तन वाहगुरु का नाम जपया जाऊगा उथे पत्थर पानी नाल पत्थर नहीं है पानी दे नाल बाणी है उसे नु कहता तीर्थ नहावन जाओ तीर्थ नाम है ते करना की है तीर्था ते जाके तीर्थ शब्द विचार तीर्था ते जाके कथा कीर्तन सुनो ये नहीं इधरों उधरों डेढ़ मील चले गए दो किलोमीटर उधरों चले गए रास्ते च रेहड़ी आ गई मूंगफली ले ली चार पकौड़े खा ले या थोड़ी जी ठंड लगन लगी चार आंडे खा ले कहने मैं फतेहगढ़ साहब जाके आए अज खे अको सतना कहना मैं हेमकुंड जाके आए देखो हेमकुंड का हाल मैंने तो 15-20 साल हो गए जाने देखे हाल हेमकुंड का जिन्ना भी होटल है आंडे आंडे के ढेर लगे पे गुरुद्वारे के मूहरे गोविंद घाट गोविंद धाम आमले च बनते ने तीर्थ रह गए साढ़े मुर्गे तड़क तड़क के खाते ने कहदे तीर्थ तीर्थ शब्द विचार तीर्थ से जाके गुर शब्द ही विचार न जुड़ो उत्थे समझो गल की है उत्थे सिखिया की दती है इत्थे महाराज ने कौतक की वरताया सानू समझाउण दा कारण की बनाए जे तू उत्थे शब्द नाल जुड़े तो अंतर ज्ञान है इनू भाई जे तो बरीक सुनना तां यह है जेडे महापुरुषां दे दिव्य दृष्टि वालिया दे अर्थ ने अंतर ज्ञान है उस तीर्थ दे अंदर कोई ज्ञान लुकया होया है अज के खोश तू तीर्थ नू वेख रहे तू बिल्डिंग वेख रहे तू पानी वेख रहे उत्थे अंतर ज्ञान है उस तीर्थ दे अंदर कोई समझण वाली चीज है तेरे कोई समझ लैण वाली चीज है उन्हें तेन कुछ ज्ञान देने पर अंतर तो तू तीर्थ दे गए ही नहीं तैसा वेखे संगमरमर किन्ना लगे मंदिर उन्ना ऊंचा किन्ना सोना किन्ना लगे पानी का सरोवर किन्ने या फिर सिख एक होर चीज देखद तीर्था से जाके कहने लंगर विच खीर भी हैगी को सतनाम गल मुक्की बस लंगर विच प्रशादा सोना मिल जाए साड़ी तीर्थ यात्रा सफल है बस जानू बेडरूम मिल जाए लंगर मिल जाए बस ये गल तीर्थ से जाओ शब्द ही विचार न जुड़ो ते तुहानू पता लगू इस तीर्थ के अंदर कोई भेद है इथे कोई ज्ञान लैन आयम है कि तुहानू जान जून तो खेड़ा छिड़ाता ते केड़ा तीर दत्या तुहानू संगत मीत मिलाप पूरा नहावणो जे पूर्ण स्नान करने संगत विच जाके बह जा जिथे आखो सर ए है पूरा नहावणो इथे पूर्ण नहाउणा है क्योंकि तीर्थ विच गोता लाए तो चम नूं धोलेगा इत्थे कला चम नहीं इत्थे हुण पंजे कर्म ज्ञान इंद्रियां धोतियां जा रही ने अखां भी निर्मल जीभ भी निर्मल कन भी निर्मल हथ पैर भी चम भी धोता गया ना इत्थे इत्थे कला चम नहीं धोता जा रहा इत्थे नाल मन भी धोता जा रहा है अज के आखो सर यह है पूर्ण इशनान वो तूड़ी से संगत में आके बैठना हुण महाराज गुरु अंगद देव जी नूं कह रहे ने कल भट्ट जी सच वाहिगुरु का नाम ही तेरा तीर्थ है सच तीर्थ सच किशना जिदे कोल सच है गुरसिख प्यारे हो की सफाई की लोड़ रहेगी की धोण धाण की की तीर्थां की लोड़ रहेगी आ इत्थे थोड़ी जी तुसी लै लिया करो हुण तां कम बिगाड़ता बाहरों आके लोगों ने बाहरले मुल्कां दा भी ये जेड़े है ना मुल्कां दे वेस्टर्न कंट्रीज दे लोक ने ये ना तो नितनेम करते हैं इन्हां नूं अमृत वेले का पता ही नहीं बुरश बर्श भी कई तो कंघी कूंघी भी सिर विच कार विच फेरनगे जिथे रेड लाइट आ जाए उठण का पता ही नहीं इन्हें पता ही नहीं भी अमृत वेला हुंदा की है देग ये नहीं कराउंदे लंगर ये नहीं कराउंदे तीर्था ते ये नहीं जांदे कोई भजन पाठ ये नहीं करदे ते किते ऐ तां नहीं समझिया तुसीं सीधे नरकां नूं जाणदे आपां किन्ने काम करदे ने सानू किन्ने गल दसी ने ये करदे ही कुछ नहीं नहाउंदे भी मेरा ख्याल सैटरडे नूं होणे जिहड़ी छुट्टी हुंदी आ अठवें दिन कोई बाणी नहीं कोई भजन नहीं कोई तीर्थ नहीं कोई देवता है ही नहीं इत्थे ते इह फिर नरक नूं जाणगे इन्हां कोल इक चीज है उस

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैपह गुर परसाद जाप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच कहां तुझ प्रभ बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तुम्हारी तो

साजी निवाजी गुरु स्वरूप साध संगत सतगुरां दी मेहर रहमत दा सदका आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे चरणां नाल जुड़ के आनंद माण रहे हो। मेहर कीती है सतगुरु जी ने सोदर संध्या रह राज जी के नित नेम बख्शे हन। बड़ी श्रद्धा दे नाल आप भी नित नेम अनुसार हाजरियां भर के गुरु की बाणी गुरु के बचन गुरु का जस कथा कीर्तन सुखदाई ते अमोलक पदार्थ प्राप्त कर रहे हो। समय नू स्वासा नू मनुखा जन्म नू लेखे ला रहे। मेहर कीती है सतगुरां ने बख्शिश कीती है लगातार काफी समय तो पावन पवित्र अथा अगम अगोचर तुरकी बाणी जी की कथा शब्द विचार आपां नूं बख्श रहे हन सतगुरु। सतगुरां दी महान पवित्र बाणी विचों भट्टां के सवैये जो सतारा भट्ट वेदां दे अवतार श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे चरणां विच हाजर होके आत्मक शांति प्राप्त करन वास्ते अरदासां बेनतियां कीतियां ते सतगुरु पातशाह जी ने बचन कीता जस करो गुरु नानक पातशाह निरंकार स्वरूप उन्हां दी गद्दी ते बैठे गुरु अंगद गुरु अमरदास गुरु रामदास महाराज उन्हां दी सिफत सलाह करो। सतगुरु दा दर है जो भी इत्थे आउंदा है सतगुरु सुख शांति चारे पदार्थ बख्शदे हन। ओ भट्ट जो बड़े आचारिया सन वेदा पुराणा शास्त्रां दा उन्हां ने कांसी बनारस विच अध्ययन कीता सी साक्षात ब्रह्मा दे अवतार भट्ट भिखा जी नाल सन। कई दिनों तो आप सरवण कर रहे हो श्री गुरु अंगद देव महाराज बाबा लहणा साहब जी दी उपमा जो तीन भट्टां ने अपने मुखार बिंद तो सतगुरां दी हजूरी विच कीती चार सवैये कल सहार जी दे पहला आरंभ विच फिर पंज सवैये तुसी सरबण कीते भट्ट कल जी दे नौ सवैये ते एक सवैया गुरु अंगद देव जी दा रहिंदा है जी दी गुरु कृपा नाल आपां ने अज विचार करनी है। इह सवैया भट्ट टल जी दा उचारण कीता होया चार सवैये कल सहार जी दे पंज भट्ट कल जी दे ते इह दसवां जिहड़ा सवैया है ਇਹ ਹੁਣ ਭੱਟ ਕੱਲ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਲਾਹੇ।

नानक इहां मुक्त। देखो कैसा बचन है, आपा तो अगे जाके मुक्ति मंगते फिरते ना, ते ऐसे कहने सुखी रहिए अगे जाके मुक्त हो जाइए। पर गुरु अर्जुन उल्ट क्रिया दस रहे ने, जिदे मन विच गरीबी वस गई ओ इत्थे जिउंदा ही मुक्त है। नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे। दूजा अर्थ, जिहड़ा इत्थे गरीबी दा जीवन कट गया, नीवा होके जीवन कट गया, वो अगले जहान विच सुख पाऊगा, ऊंचा होगा। पढ़ो तो जरा प्यार नाल, ओही ना बोलियो जिहड़ा ढिल्ला मिस्सा होवे, जिहड़ा रोटी खांदा जरूर बोले हो, जिहड़ा चाह चू पीना जरूर बोले। वेखो कैसे लंगर पदार्थ बनदे अपने खातर, फिर ढिल मिस नहीं करी दी,

नान है जो सिर काई नान है तो सिर दी जय तार तो सिर दी जय तार जो सिर काई नान है।

ये बचन सारे आपको जिस साहेब के चरण शरण में बैठे हैं इतने ही निमाणिया मान मिलता है, इतने ही निताणिया तान मिलता है, इतने ही नोटिया ओट मिलती है, इतने ही आसरिया

हे निरंकार तू किथे नहीं है। मैं ते जिथे जिथे भी जा रहा तेनू ही पा रहे। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी थां नहीं जिथे तू ना वसदा हुए।

एक वचन सारे आपको साहेब के चरण शरण च बैठे हैं इतने ही निमाणिया मान मिलता है, इतने ही निताणिया तान मिलता है, इतने ही नोटिया वोट मिलती है, इतने ही ने आसरिया

तिस बिना नहीं कोई। जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोई। वेद सिमरत कथा शास्त्र भगत करें विचार, मुकत पाइया साध संगत बिन सजाए अंधार। चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक, तान मान दीवान साचा नानक की प्रवटेक। चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक, तान मान दीवान साचा नानक की प्रवटेक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, जप जी साहिब, एक ओंकार। सतनाम करता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। सोचै तो सोच न हो वई, जे सोची लख वार। चुपै चुप न हो वई, जे लाई रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी, जे बन्ना प्रिया भार। सहस सियाणप लख हो वई, ताइक न चलै नाल। किब सचियारा होई है, किब कूड़ा है तुटै पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाई। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै बड़ियाई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लेख दुख सुख पाई है। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म जे बुझै, ता हुम कहे न कोय। गावै को ताण होवै किसै ताण, गावै को दात जाने निशान। गावै को गुण बढ़ियाइयां चार, गावै को विद्या विखम विचार। गावै को साज करि तन खेहे, गावै को जी लै फिर दे। गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा दूर। कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी गोटी कोट कोट। देंदा दे लैंदे थक पाही, जुगां जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै बेपरवाह। साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाऊ अपार। आखे मंगे देह देह, दात करे दातार। फेर के अगे रखिए जत दिसा दरबार। मोहों के बोलन बोलिए जत सुन करे प्यार। अमृत वेला सच नाऊ बड़ियाई विचार। करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक ए वह जानिए सब आपे सचियार। थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जन सेव्या तन पाया मान, नानक गाविया गुणी निदान। गाविया सुनिया मन रखिया पाऊ, दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया सुमाई। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा, गुर पार्वती माई। जे हों जाना अखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावां जे तिस भावा, बिन भाणै के नाई करी। जे तीसर ठो पाई वेखा, बिन करमा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुणी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए। नवा खंडा बिच जानी है, नाल चलै सब कोए। चंगा नावर खाए कहे, जस कीरत जग ले। जे तैसो नदर न आवई, ता बात न पूछे के।
ਕੀਟਾਂਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਜਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ

गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग बेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पाया ले गावन रतन पाए तेरे अठड़ तीर्थ नाले।

संगम अजमेर माता सजबे आदे संग आदेश नमा संग अभेश नमा संग नरतामे नमा संग नरभामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमा सासदेव नमा संग अपेव नमा संग जनमे नमा संग सुभनमे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस दयाले नमस्तंग वर्णे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कर्तारंग नमो सर्वतंदे नमो अस्त बंदे नमस्तंग नरसाके नमस्तंग नरभाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महांते नमस्तस राग्य नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसुखंग नमो सर्वभोगंग नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद दा प्रसाद अरूप अनूप जूह पूहा लेखा पेखा नाम कामा देहा पेहा जीता पीता धर्मानंद आना त्रिपुर सरगाए अनिल है अनाद है जया जाद है जन्म वर्ण भूत है वर्ण है गंजा बांझा जूझा जांझा मीघर भीघर दंद है बंद है नरभूज है सूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है जह है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्दम्ब है सम्ब है अगम है जम है भूत है सूत है अलोक है अशोक है कर्म है परम है अजीत है पीत है बह गाय मानन दान अलीक है प्रेक है भुजंग प्रयात शंब नमो सर्व मान्य समाज तीन दान्य नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे अनंगी अनाथ नृसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मन माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो दान दाने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाल बाधे अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे परपंगी परमाते समाधि बभूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम वृद्धे नमो सहस्त्र बाणी नमो अस्त्र बाणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेता प्रेत देवे सुधर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाशांग नमो पूप भूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमो संग शनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समा तुलने वासी सदा सदा बुद्धदा बृद करता अद उर्दर्दंग गंगो घरता परंग परम परमेश्वरंग ब्रोष पालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अशेदी अपेदी अनामंग अकामंग समास्त ब्राजी समास्त सदामंग तेरा जोर जा जरी शंब जले हां थले हां पीता वै प्रभु अजुआ दे सब बेसाए भुजंग प्रयात शंब अगाधे अबाधे रंधी स्वरूपे नमो सर्व माने समास दीन दाने नमास तुंग निर्नाथे नमास तुंग परमाथे नमास तुंग अगंजे नमास तुंग अपंजे नमास तुंग अकाले नमास तुंग अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व भेषे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व भीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृष्टंग नमो सर्व गृष्टंग नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजय पिजय समाज तंग प्रसिजय कृपालंग स्वरूपे।

देव पे बिना जानी जय बेदौर का देव रूप रंग न जात बात उस जानी कह जेब उदात्मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चकर बकर फिर चदर जाक मानी प्रतीन लोक चौदा के बिखे जग जाप जय जाप आद देव नाद मूर्त तप सब जय थाप परम रूप विनीत मूर्त पूर्ण पुरुष पार सर्व सुर चुस्यम पवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुष देश धर्म धाम सु परम रहत भूतल कपेश अंग राग न रंग जा कह जात बादरा नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूपमी गाना सदैक पुरुख दूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंगहीन अभंगना तमेक पुरुख पारु सर्व लायको सर्व कायको सर्व गोप्रत पारु सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेजन पेख सर्वशास्त्र न जानी जय रूप रंग देख परम वीर प्राण जय कह नीत पाख निरत कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवई बहु चित मद पार छंद दव प्रसाद गुणगन उदार मै अपार आसन पंग पवन अंग अनुभव प्रकाश निर्दन नाश जन बह शान शाह राजन राज पानन पान दीवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंगन रंग कालन काल अनुभूत अंग अपंग गर्मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम आत दुत प्रचंड मित गद अखंड लिश कर्म दृश धर्म सर्व प्रणाड्या अणरण बढ़िया जाचरी संग दग प्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारी अपारे हरियंग करियंगे कामे भुजंग प्रयाद छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर वरती चतर चकर दाने चतर चकर जाने चतर चकर वरती चतर चकर भरती चतर चकर बाले चतर चकर काले चतर चकर पासे चतर चकर वासे चतर चकर माने चतर चकर दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय जन्म न जाये न चित्र न मित्र पर एम पवित्र प्रसिशा दिशा दृशा गृह सह भगवती छंद दग प्रसाद कथ ते क्या सच देसा क्या बज बेसा क्या पंज परम क्या गंज करम क्या पंज परम क्या बजलो क्या क्या दसोगा क्या दूत करना है क्या भूत करना है क्या राजिंग प्रवाएंगे धर्म तुझाए क्या शोक वर्ण है कि सर्व वर्ण है कि जगत कृतियां क्षत्र क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप है क्या अनुपव रूप है कि आदो देव है कि आप अपेव है कि चित्रंग विहीन है कि कह दीन है कि रोजी रजाकर ही मैं रहा कर के पाक बेब है कि गैबुल गैब है कि अफुल गुनाह है कि शाह निशाह है कि कारण कुरिंद है कि रोजी देंद है कि राज करही मैं कि कर्म करी मैं कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र माने आएंगे सर्वत्र दाने आएंगे सर्वत्र गौन आएंगे सर्वत्र पौन आए के सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र बाल है कि सर्वत्र हंता के सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे हैं के सर्वत्र थापे हैं के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग प्रेम है के अगल उलाम है के सैव कलाम है के हुसन वजू है तमाम अदर वजू है हमेश सलाम है श्री कृष्ण मदाम है गरीबल सरसा गरीबल बरसा है बलंदर मकान है जमीन जमान है तमीजल तमाम है रुजोल नदान है हरीफल जीमर जा के जगीन है नेकल तरंग है बेद है पंग है जीजल नवाज है गरीबल खराज है नरोकत स्वरूप है त्रमुक्त बभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सजोक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त बराज है सदा सर्वसाज है समासल सलाम है सदैवल काम है निर्वाद स्वरूप है गाध है नूप है वंगाद रूप है नाद स्वरूप है नंगी अनामे त्रिभंगी त्रकाम त्रिवर्गंग त्रिवादे अगंजे गाधे सुभंग सर्व भाग्य सु सर्वा निराग्य त्रिभुग स्वरूप है स जय सूत है नरकंग प्रणास है प्रतिकूल प्रवास है
निरोकत प्रभा है सदा सदा है बहुत स्वरूप है प्रजोत अनूप है निरोक्त सदा है बहुत प्रभा है अनोक्त स्वरूप है प्रजोत अनूप है चाचरी छंद अपंग है नंग है पेखा लेखा परम कर्म नाद जगा दया जय है भय भूत तू दैन सबद सदंद बंद है अभगत है विरगत है नाश है प्रकाश है नजंत सनंत लेख देख लेख बेख टाय गाय संभ है कम है नीला नाद है अनित है सुनित है जात है जाद है चरपट छंद दव प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल छंद दव प्रसाद नमो नरकनाथे सदैव प्रकाशे नंगंग स्वरूपे अभंगंग बभूते परमाथंग परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न दाते न माते न जाते न पाते निरसाकंग श्रीका मित्रमी गाय सदैव।

तुमरा लखन जाय पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुस रूपा रंग भयो राव गई भूपा।

आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पैसर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजी अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक।

तारण तारण हारण हृदय दुख न सक व्याप दीन दर्द निवार ठाकुर रख जन की आप। तारण तारण हारण हृदय दुख न सक व्याप साधु संग भजो गोपाल आन सांझ

वेद सिमरत कथा सासुद भगत करें विचार मुकत पाइए साध संगत बिन सजाए अंधार चरण कमल आधार जन

मन मेरे तुम की ओट ले। ओ माय सोल सीक द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु हैव नोन द ट्रू लॉर्ड, सरेंडर योर हार्ट बॉडी एंड सोल टू देम। द मैन हु रिकॉग्नाइजेस हिज लॉर्ड, दैट मैन इज द गिवर ऑफ ऑल थिंग्स।

अवर सयानप सगली ख्याद तिस्किन कीतु सेवा नाग लीव ऑल अदर क्लेवरनेस एंड अटैच योरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ सच अ पर्सन.

अंगूर की मत तुले यानी भगत बिना बहु डूबे सियाने। दिस इज दिनेश शब्द फ्रॉम सुखमणि साहिब। इट टीचेस अस टू फॉलो द पाथ ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन शोन बाय द गुरुज।

वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग चवल छतर के मालक युग युग अचल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी संगत सोभा मान खोए बैठे

गुरु ग्रंथ साहिब एकता धर्म निरपेक्षता अते इंसानी भाईचारे का प्रतीक है। गुरु ग्रंथ साहिब दे रचयिता गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना करन समय गुरु साहिबां दे नाल नाल मुस्लिम पीर फकीरां हिंदू पक्तां अते पट्टां दी बाणी नूं गुरु साहिबां दे कुल सम्मान दे के जिथे ऊंच नीच के पिन भेद मिटाए उसके नाल ही गुरु ग्रंथ साहिब नूं रब्बी नूर ते रूहानी ज्ञान दा विशाल सागर बना दिता जिस विच टुब्बी ला के कोई भी मनुख सर्व सांझे रब दी बख्शिश पा सकता है।

अपनी पौड़ी अंदर लिखे है चली पीड़ी सोटिया रूप दिखावन वारो वारी दसो पिता ने इस पौड़ी का हवाला देते हुए अपनी बानी अंदर बचित्र नाटक विच बड़ा सुंदर करके लिखे है कि ये सोटी अंश कितों चली ते किवें संसार से आई दीवारों वाली रूप कितना धारण किए ने भाई साहब साहिब दास साहब की पौड़ी अंदर लिखी।

குரு பாச்சியார். இஸ்பான் குறித்த கபசங்கள் தனு கல்வி ஜீவான் உபதேசித்தே ஹே ஹே கலத் மஜாரே நே கே ஹே மனுக் தாத்தா இக் ஹே தாத்தா அநேக ஹே தேன் வாலா இக் ஹே மங்கன் வாலே பொதேரே ஹன். ऐसा नहीं है कि हर कोई एक ही दात मंगदा हो, नहीं हर किसी की मंग वखरी है, पर वो एक दाता सब दी चोली दात पा रहे है। एक गल वखरी है, किसी नु जल्दी किसी नु देर है, पर दात सब नु मिलती है। ये नहीं कोई कह सकता कि दात मैनू नहीं मिली, हर कोई दात प्राप्त कर रहे है, क्योंकि साडे गुरु ने सानू इको गल समझाई है कि दात लैण तो पहले एक काम कर, गुरा एक दे बुझाई है। ये गल दसी है, सबना जिया का एक दाता, सारे जीवां दा दाता इको ही है, पर शर्त की है तो मैं विस्तर न जा, बस उन्हू विस्तारना भुलना उन्हू हमेशा याद रख, दात जेड़ी मंगेगा वो मिल जाएगी। हुण साहिब कहिंदे ने, हे मेरे मालिक वाहिगुरु अकाल पुरख, मैं सारे जगत नू फिर के वेखे, हर पासे झात मार के वेखे, तेरे वर्गा कोई दाता नजर नहीं आया। तू एक ऐसा दाता है जिस को हर कोई दात आके मंग रहे है। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता मैनू इको ही दाता नजर आया है,

खंड ब्रह्मांड जिथे जिथे भी जीव कोई रह रहा है वो भाई उन्होंने सारे का दाता इको ही देने वाला है।

एक है दाता अनेक हन। दाता और दाता विच बहुता फर्क नहीं। दद्दे नू कन्ना तत्ते नू कन्ना दाता, दद्दे नू कन्ना ते तत्ते नू कन्ना उत्ते टिप्पी पै जाए बन जांदे दाता। हुण गल सी दातार नाल जुड़ती, जुड़ गए दाता दी नाल। साहब कहिंदे दात हर तैनू मिलेगी, पर दातार नू याद करके। दाते दात रखी हाथ अपने, जिस भावे तिस दे, क्योंकि सब दाता उस मालिक दे हाथ विच नहीं, जो भावे दे दे वे। भाई साहब जी दा एक बचन बड़ा कीमती है, आपकी झोली पावा, क्योंकि सतगुर बाणी विच कहिंदे ने सब दाता ही मालिक हाथ हन। जी प्राण तन धन दिए दीनी रस भोग। हुण दाता दा जिक्र है, केड़ी केड़ी दात है? जी प्राण तन धन दिए दीनी रस भोग, ग्रह मंदर रस अस दिए

मन क्यों डोलद? मन के डोलन का कारण की है? क्योंकि मन का कोई आसरा नहीं, मन का कोई सहारा नहीं। शायद उपदेश देंदे यह गल समझ आ रहे ने, सतगुर संग ना ही मन डोल। जे मन नूं यह यकीन हो जाए कि गुरु मेरे नाल है, फिर मन नहीं डोल। फिर मन एक दलासा है, मन एक भरोसा है कि गुरु मेरे नाल है। पढ़ते तो आप जरूर हाँ, गुरु मेरे संग सदा है नाले, पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। जे भरोसा हो जाए तो वाकई मन डोलदा नहीं। पर सतगुरु ने ख्याल दिता है कि मन के डोलन के कुछ कारण हैं, कि मन क्यों डोल जाता है। चार कारण खुद सियाणिया ने गिण के दसे। इस मन नूं डर है चार प्रकार का, जिस कारण यह मन डोल जाता है। वो किहड़ा है? पहला सरकार का, ते दूसरा है समाज का, तीसरा है रोजी का, चौथा है मौत का। यह चार प्रकार का डर मनिया गया। हुण जे इन्हां तों बढ़ जाए मन नूं इह निश्चा यकीन हो जाए कि गुरु मेरे नाल है, फिर मन डोलदा नहीं। इन्हां चारां दी गल सतगुरु ने बाणी विच कही है कि सरकार दा डर कैसा है जे मन नूं यकीन होवे। सच्चे दी सरकार जुग जुग जानी है। इस मन अंदर कोई डर होवे ते केवल सच्चे वाहिगुरु दा हो, किसी होर की लोड़ नहीं। तो वो सच्चे की सरकार जो जुगो जुगंतर तो चली आ रही है, इको जी है, उस विच कोई डर नहीं। दूसरी गल समाज की, समाज तो मनुख बड़ा डरता है। समाज की आखेगा? बाणी का फैसला, कोई पहला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है कार। कोई चंगा कवे कोई माड़ा कवे, हे मालिक मैं ते अपना आप तेरी अर्पण कर दिता। क्योंकि संसार अंदर ऐसा ही हुंदा है, चंगे काम की कभी शोभा नहीं हुई। कोई गुरु घर ही आने लग पवे ना, कि बहुते लोग विच एहो जे हुंदे ने, वेखो जी रोज गुरुद्वारे जांदे, ये ते भगत बन गए। वो भाई भगत ही बने हैं, गुरु घर ही जांदा है ना, चंगा काम है। इसलिए कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार। मैं अपना आप तेरा अर्पण कर दिता है। फिर अगली गल रोजी की, ते रोजी मालिक ने सब नू देनी। रोजी तो कोई भी रोक नहीं सकता, जो मस्तक विच परमात्मा ने लिख दिती है ना, वो ते मिलनी। ख्याल करो,

ऐसे जीने, ऐसे जीवन सतगुरु ने सृगाकार करके अखे। जेड़ा जीवन नाम तो विहून है, जेड़ा जीवन नाम तो बिना है।

किन्ने हरि नु विचार दिता उखवार ही हो गई। सब कहिंदे क्योंकि नाम तो बिना तो सुख है ही नहीं। जे सुख चाहने ते नाम जप सिमरन कर, सिमरन तो बिना सुख नहीं मिल सकता। साहब कहते हैं हर बिस्तर

அறிவித்தார். भक्ति करने गए वापस आए कि वेखदे ने बहुत वड्डा सारा एक दरवाजा, जिस दरवाजे अंदर एक कड़ियाल कनी है। कड़ियाल नु वेख रहे सन एक संतरी आया, हाथ में लकड़ दा थोड़ा फड़े। उस हथौड़े दे नाल इस कड़ियाल ते चोटा मारनिया शुरू की थी। जब कड़ियाल में चोटा वजिया, फरीद साहब ने अपने मन में संबोधन किया कि सानू कल भी उपदेश जीवा नु उपदेश दे रहे हैं। कहंदे ने फरीदा, दर दरवाजे जाए के क्यों बिठो कड़ियाल, एन दोषा मारिए हम दोषा दा क्या। ए फरी, एन दोषा इसने कोई दोष भी नहीं किया, न दोषा ही मारिया जा रहा। असि तो दोषी हाँ, साढ़े दोषा का की हाल होगा। असि कितना वड्डा दोष कर रहे हैं, मनुखी जाना भी धारण किया, संसार से आए भी लेकिन बखूने जा रहे हैं। किस तो नाम तो बिना। फरी साहब बड़ा सुंदर ख्याल देंगे।

कवि साहब का ख्याल बड़ा सुंदर है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं किसी नूं बुरा क्यों नहीं कह सकता,

हम तज पालो सब कोई बुरा न दिसे कोई, बुरा न दिसे कोई ना हम चंगे आखिए। मैं अपने आप नु चंगा क्यों नहीं आखदा, क्योंकि परमात्मा मेरे अंदर ऐसी चंगियाईयां ने, मेरे अंदर तो अवगुण ही भरे हुए ने। मैं अपने अंदर गुण पैदा नहीं कर सकिया, अपने आप में चंगा किवें कह सकना।